खबे कौन कौन इसके बोल सकता हूँ रे। नहीं कहोगे कहीं बोल खो गुप जो कहाँ आज को काय ग्रस्ती की नहीं राजी बोले खोगू। अरे मैं बाप बोले राजी खोगू नहीं मैं आई को काय ये मस्ट कम डाउन मान खोल कोने दिखो। हाँ दिसी तुइन आज काय करी को काय। हाँ दिसी तुइन आज काय का अंटोनीसे अंटोनीसे जो काय अंटोनीसे जैसी नंबर 11 हमें को नाइ गाउ रे सरु मडी का मरे जो मिया दे मा मिया गुरा मुनियो अंटोनी से जो का काय जैसी नंबर 11 अदरा गौसन अदरा गौसन कौन कौन दिखो। हाँ खबे कौन कौन इसके बोल सकता हूँ इस खबर कहीं ऐसा कोई ना खबर ये खो आ बच्चे ऊंचे हैं उमु हैं खो आ बच्चे ऊंचे कोसा नहीं तो कहीं खबर ने बात कौन कौन इसके बोल सकता हूँ खबर कहीं से खो कहीं ने बारा वाम चा खो दे वो संगार संगारे खबर हम कुछ ऐसी खाई खाई कुरा शाओ काउंट हो रहा भी थे चू कहीं इसके बोल सकता हूँ कुरा शाओ के नगो बारा हंसन काउंस के नगुरुआ नगो बा फ्लोरानस कुरा शाओ खाई अगुप लंग बुझे नगुरे खबर खोल करने खाक कैसे कुरा शाओ खाओ कहीं फ़ोन वल ने बाहु कहीं कुछ एवरी कोस का खाई खाक कैसे खोई जाने माम चार आप जो कौसन हो बा ने बाहु रिस्का भी आंग हरू क्राइस्ट के ने बा इनाउ हमा कनक आप आंग हरू एवरी कोस इंग और कभी हरू करू कौसन हो ना को बा इस टाइप का कौन कौन दियो माने ने को आप जो खो दे वो आबा खबे कैसी बा मा कनक आप आंग हरू है पास कुरा गुजा एवरी कोस कौन लगा खोआ गुजरा पास कु kanaka kwangu esa amku ngathi anaka pepe nicolas pepe yo what a finish kida tamro ya jerusalem stabia idi di sidi omuza kirimi ne Ivory Coast tam Curaçao vai treinar. E a Erika em level era finis. Sabe o que? Juro bem na que o Pinho naba. Vila Real se naba. Tá chegando naba. Mardi passes deadly. Nas que Sangare pjogo. Pass anti. Ure di agait esta ko khaba chedi bole kandire nu kona za place e yo nari gira kausen subudma obispo jokro nganzen subudma gaudwe खबे नया कुंगो इसके बोल सा हैं गो खाई खबे इस खबर का खाई इसके बोल सा गांव रे नेप के चोंगा कुरा साहब के ऊंसे ना माँ कोखा आप के चोंगा चोंगी के आरोसा नूरा गुरी तू बा खबे हम कुछ उखाई इसके बोल सा अब रिकॉर्ड के लेजेंडरी एक दिन जरा खाएंगा इसाबो से नूर खाबे हम कुछ कोई ना काफी रूम आ चेने बा उबुझे नूर आ ओके इनको आज के बोल से कहाँ डो गारीब का इस तरह नूर खाबे कोई तो नहीं चीज़ है वाचन आउं ना से कुछ कुराशा होगा